0: खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धुली तन भरई, खने खने दसन छटा छूट हास, खने खने अधर अगे करु बास, चौकी चले खने खने चलु मंद, मनमथ पाठ पहिला अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खनि अचर दाए खनि होए भोर।
1: आपनी सुनछेन रेडियो बांग्लानेट डॉट कॉम प्रवासी बांगाली 24/7 ऑनलाइन बांग्ला रेडियो स्टेशन, मन जखन निरुद्देश।